आओ जों दाबो खनालायनाय तिनिनि तांबिति जों खनालायानो वाक्रे एबाके यंचा कायनानि दै नायगानि नति कक्रक किसा चीनी बड़ रख हिनके बा वाक्रे हिनो दे केव केव रख हिनके बा यंगचाक हिनो साइंस बाइके पार्किया तिमोरियाना हिंजागी तंगो इंग्लिश बाइके ट्रीबिन दे स्ट्रिंकिबिन हिनो वाक्रे गबां कुक अंगमानी थायरक उनखा थाईलैंड मलेशिया म्यांमार इंडोनेशिया आसाम ते मणिपुर हाइफानो ताबो हिनके चीनी हास्य त्रिपुराव बेलाइखेनो अंगमानी रक नगो वाक्रे बुफां कलक कतर अंगो आबनि बागैनो बथायनि लगे लगे बुफांबो चीनी सामुंग नांगौ एबा जों सामुंग थेबाव वाक्रे चीनी साखनि बेमार रमदि डायबेटिस एलडीएल कलेस्ट्रल न खायख्लायथानि लिभार तै केन्सार बेमार न कासुथानि तै चीनी वाना चिन्ता न कासुथानिबो वाक्रे बेलायन सामुं खालायो वाक्रे न जों मस्त

0: आव जों आसिक जरा दखनालायका साखामनि कक फायके फायदिके जों दाबो खनालायानो कक थमरो यूथ एफेयर्स एन्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरानि बखाक्ते जुनियर फिजिकल इन्स्ट्राक्टर ग्रुप सि आचुक थायनि इन्टारभिउ बिसकां 1 July 2026 निसिमि चेंजाखनाय थाय हिनके त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल बादारघाट आगरतला केनेडिस रग्न डिपार्टमेन्टल वेबसाइट https://yas.tripura.gov.in अरनि कल लेटर डाउनलोड खालायनि बागै साजाखा तुमुंकेबो डाउनलोड खालायथानि जोंजाल नुकजाखा हिनके केन्डिडेट्स रग्न 9402304271 अ ककदुक नम्बर करोंनि बागै साजाखा ककदुक नम्बर तेसे साजाख फिरो 9402304271 काइसा साख्लाय मंग जतन न साख्लाय जाखा मिया 26th जून महरम 327th फोर सेटारडे तै खना 28 ककतिसाल सालथामरमै हलिडे तंफान 327th जून फोर सेटारडे त्रिपुरा हाफांनि साखाम तै नुखुं हामक्राय दप्तरनि आगरतला गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेज एन्ड जिबिपि हस्पिटाल आगरतला गभर्नमेन्ट डेन्टल कलेज एन्ड आइजिएम हस्पिटाल अटल बिहारी बाजपेयी रेजिनल केन्सार सेन्टार तै मडर्न साइकेट्रिक हस्पिटालनि ओपिडि तै डायग्नोस्टिक सार्भिस रक फियगजाक तंनायहिनै साख्लायजाखा
1: आव गे हाइनहाय सापिरानो त्रिपुरा पलिसि फर स्क्रिनिं ते अबनि बिसिंतै जे आइसिए डिपार्टमेन्ट ताबुक नरक साना थाखांखाय इन्टारभिउ रिनानि एबाखा बरकनि जे कयलाय रिनानि बागै मुसुङै तनाय रक आबनि बिसिंगो ओङैमानो हुकुमु मुकुमु बायखोरोंजाक आबनो सायनानि बागै ओङैमानो नरक रुचामुं ते मसामुं थियेटार आबहाय एंकर ते म्युजिसियन ते आबनो कारिफानो जे कक्लब ककतां सानाय मुसुंनाय रक नरक जानिजा हांखरो थांगै आबहाय एप्लाई खालायमानाय आबनि बागै www.ica.tripura.gov.in अ वेबसाइट थांगै नरक जानिजा जे कयलाइनो थाङै जमाबरि मानो ते एप्लाई खालायि आरो थाङै माने मालाय मानो आबनि बागै नरक जे मुसुङै तंनाय रक जे आपग्रेड ओंजाक आबाहायरकनि बिसिङब तमुं बारेरिना मुसुङै तंखाङे अ जुन तालनि नैथिब्रै सालमारिनि सिमि थामजिसा आगस्ट तालनि 2026नि बिसिङ नरक थाङै मालाय मानखाङे बेलायखेनो गाहाम
0: आव जों दाबुक नायलायनाय सेबुग बरकलांमानि ककरक आनिया फाव तंग वाक इन इन्टारभिउ नतियै किसासक साख्लायमुंग्रक उदयपुर गुमतिनी नेताजी सुभाष कलेजो साइकोलजी ओ गेस्ट लेक्चर लांजाकनाय वाक इन इन्टारभिउ नि सालंखा 3 July 2026 एबा फा सालो फुंनि दामचिसा तामै दामचिसा तामफ्रुनि सिमि दिपर दामसा ताममा जरा अबंखा टेम्परारि 31 August 2026 जरा रोंमारि मास्टार्स डिग्री ओ इंगिया हिनमानि न 55% तंनानि नांनाय फिया रायदानो रोगै एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी पी एच डी केन्डिडेट रकनि बागै 5% खायख्लायजाखनाय अनार्स डिग्री गोनां रकन आलायजाखाय नायजाखनाय अनरारियाम हिंखे 45 minutes नि पार क्लास न थगै बारा खाय रिजाखनाय फिया ताल थगै बेबागै 20,000 नि साय गोबां रां रिजाक ग्लाखिनि ब साजाखा त्रिपुरा एग्रिकल्चर कलेज लेम्बुछराव कायसा प्रोजेक्ट एसिस्टेन्ट आचुक थायनि बागैबो वाक इन इन्टारभिउ ओंनाय 1 July 2026 प्रोजेक्टनि बुमुंखा प्रमोशन अफ अर्गानिक निउट्रिसन गार्डेन एमंस्ट रुरल पिपल अफ त्रिपुरा अबंखा नाबार्ड बाय स्पन्सर खालायजाक इन्टारभिउनि जरांखा 1 July 2026 सालो फुंनि दामचिसा तामै सति थामचिव भेरिफिकेसननि बागै केन्डिडेट्स रग्न बेबाग अरिजिनेल सार्टिफिकेट्स लगिव तुबि फाइनायनि बागै साजाखा तै बो स्राय स्रायखे सिनानि बागै www.coatripura.ac.in अ वेबसाइट नायना बागै साजाखा अब हाइनोहाय त्रिपुरा एग्रिकल्चर

खापांनि मारखिसिं नरकनो पाइफ्लाया हमजाकमा याफारै लामसुगो सारसा पॉइंट डॉग मेगाहर्जो एफएम उसुएंतो खापांनि मारखिसिं तिनिनि सालनो बेलाय खातमाबाय ख्लाय आं नासिंजाक नरकबाय गोरोंनानि बागैनाय नरकनि खोकनि ककटां कगलो फ्रो खनानानि बागै आव हाथी बारसाओ सा साल साल सानो जों ककटां कगलो प्रथमारक खनानानि सेब मानलायो हायादिबा ओंखे आबो हायखिनो तिनिनि साल जों मानफियोखा सा साल सा सालो होंखे ककटां कगलो खनानानि साल नरकनि ककटां कगलो खनामाबाय खापां स्रांगो बोखा मगजाक थांसामा मानो खापां स्रांगिया तंथमा मानो मनै मुं मानो मनै मानो आव बन बगैनो खापांनि मारखिसिं तिनिबो नरक गोरों हरनानि तापकदि जों तिनिबो हायनो ककटां कगलो फ्र खोनालायनाय नरक सागांगो सामानि हाय तिनिबो हायनो नरक गोरों हरनाय होनै आं खाख्लायो गोरों हरबायनाय ताय बाक्सा बाक्सा सिनि बिसिंगो ककटां कगलब सान्नानै मुसुङैबो जरा मानिया होनै दामि सानाय फोन लाइन मानिया रक होनै सालायो हाके खाफुंनि मारखिसिं आव जे सिगां ख्लायनाय गोरों हरनाय बरगनो माव मानो गेनर गोरोंनानै तापकदि 03-81-232-6253 ककदुक नाम्बारनि बिसिंदै आव हाके तिनि सिनि बागै ताइ गैसा बेलायखे तंथकमानि साल गांगे आव सिनि बसंनिनो आव बलिउड हायाखाबा हिन्दी रसामुंनि हाफारो आसोखे सिनि भारत हाक्टर ताइ हायुं गोनाङै मुं सिनिजाक बिनि आसैमानि साल बसाबो गांगे राहुल देवबर्मन राहुल देवबर्मननि तिनि आसैमानि साल खाफुंनि मारखिसिं हाके 27 June 1939 बिसियो वेस्ट बेंगल हायखाबा कलकत्ता बो आसायो राहुल देवबर्मन बन बागै ओ मिउजिक डायरेक्टर कम्पोजर सिनि तिप्रासा बसं न बेलायखे कुंसुग्रनाय सिनि मिउजिकनि हाफारो लाइबुमाओ रांसाकनि सायफानो मरक ख्लायनाय बिनि मुं काजाक सैजाक खाफुंनो मारखिसिं जे मिउजिक जे रसामुं रक खोनावै हिन्दी रसामुंनो खोनाथक जाखनाय रक खाफां स्रां जाखनाय रक बिनि मिउजिकनो खोनावै जों आसो ख्लायनाय तंथं मुं मानबायो ओ राहुल देवबर्मननिनो तिनि तिहाय सालो आसैमानि साल हायदिबाना खाफुंनो मारखिसिं हाके अजराव राहुल देवबर्मन तिनिओ जोंमै गृहा हाइफानो बनो जों बेलाय ख्लायनाय बरम खुलुमुं याफार जाओ ताइ नरक बहायनो बिनि रसामुं बिनि मिउजिक कम्पोज खायजाग्र खोनावैनाय बेलायखे खाखसांबायो तंथकजाबायो आं सैमानो हाके आव बो 1960 निसिमिं 1990 30 इयार्स नखा बिसि थामजि जरा बो एबेलायखे एक्टिभ उइनाय मिउजिक कम्पोज खालायखा खाफुंनो मारखिसिं ताइ 331 निस्लायबो गोबांबो मिउजिक कम्पोज खालायखा जे मिउजिक रक बर' रकनो काब रोखा बर' रकनि मखलै मोख्रै खिख्लायखा तंथक रोखा मोनै रोखा खाफुंनो मारखिसिं आव राहुल देवबर्मन न खुलमं

0: आओ काबुने मारे किसीं केरांगो तुम्हारो खनाते खनाते काबुक के दीपोर्नी दामची नई छोटी नईसी अंका अंके ताई खोर बुसिंगनी खोकती बा खनाई मानो सेमनिया है दीवा अंके यंगसी ने जोरा बो पायरक पायरक नरोनी कॉल बो पायरक पायरक नो फाइटोंको दो नाइगर शिवना को है के शाबतोंग पी हेलो
1: हेलो मनाई
0: दीपोर का हम दीपोर का हम भाई को तो
1: ओ साकी चाया कॉल अपन से साइक मारे वाला नहीं करंग मानी
0: दा दा दा सादी
1: गाय
0: बेलाई तो अंकल का नहीं कॉल मने
1: गाय केरम पाई बुबार
0: केरम बार बुबार
1: केरम बार बुबार
0: ओ
1: केरम बार बुबार नंगले हाओ बो आसाया हाओ बो तोंगया बुफां छकावो आसायै नंगले बारै मतमबै तोंगो बुफां बाय गदालै तोंगो बलाय लोंग मिलि बुबार कलोलो बारमा गनि ने सुमत्रां सुजा गाहाय
0: उफ
1: बसते नायथ निनि बुबारले बुइ बाय मसांगया निनि बुबारले नायथक मानिबो बुनिसाय बारा मतम मानिबो बुनिसाय बारा हावबो खापों थाखिनि दैबो बखिनि बारै न मतम बै तं मानि ताबुं न मतम लिया दुसु बबनि सराय मंजावै ताबुं न मतम लिया निनि बुमुं न खुदागै ताबुक ब प्रथमा साजागै दङ अमरै थांया निनि बुमुंले जुगे जुगे न तंनाय निनि जुगे जुगे न तंनाय खुमनि बिसिं ब नं बुसु कुथार खुम सौ ब आसाया बंग्राय बाया कान्ना मुसुं ब खलै कानमाया सराय मंगजा खुमबार नंले बुसु

0: खपने मार्केसिंग नर्गनो लामसुगो नर्गने हमजाकमा चिनिक खातुमा पांदाओ आओ खपने मार्केसिंग तिनती हाई सालोनो सिने बारो थाक्तोर ने बेलाइखे म्यूजिक हायकाबा बॉलीवुड ने हापारो हिंदी रसामु म्यूजिको बेलाइखे मुंगनां सिनिजाक आथुक्री बंखा चिनी नो खरकचा आरदी बर्मन हायकाबा राहुल टेब बर्मन बिनी निकनेम हायकाबा बनोरिंग लाइ माने हिंकांके पंचम हनि हिंजागो खापुने मारकिसिं तिनीति हाय सालोनो ओ म्यूजिक कंपोजर रसाब ग्रं म्यूजिक कंपोज खान्या ग्रं बंखा आरदी बर्मन राहुल देव बर्मन इंखा सचिन देव बर्मन नि साजला तिनीति हाय सालोनो 1939 बिसियो बो जोंटाल नि तिनीति हाय सालो 27 साल मारियो बो वेस्ट बेंगल नि कलकत्ताओ आसायो हाके बो आसे ख्लायनाय हिंदी रसामुंगो म्यूजिको बो आसे ख्लायनाय मुंगनां खाबुने मारकिसिं सिन भारत हाक्टर नि हिंदी म्यूजिक कंपोज रसामुंगो कंपोज ख्लायतानि रगो बिनि मुं रांगसाक नि सैमुं बाय सैजागै थांका हाके तिनी तिहाय सालो बिनि आसे मानि सालो खाबुने मारकिसिं बन मुइतु मानो ताई खलमुं याफारो ताई नरक जतन ब हायनो खाकाहाम याफारो सिनि राहुल देव बर्मन नि आसे मानि सालो हाके नर रसामुं खनानि तंखना ओ म्यूजिक रंखा बबानो कंपोज खलाइजाक ओ मेरे दिल के सैन चुरा लिया है तेरा बिना जिंदगी से बीगे बीगे रातो मारो गबांग मर समों तंगो खापने मारे किसिंग आंग मन कहने अब बिनीर समों रोग बहाने नर मां बिसिंग बिसिंग खाना रन बागी चाइतो करने दो है के और जोरो वो कोक दुगो साबतों से नई नगर शिवन आको साबों खाना हेलो हेलो
1: हेलो
0: आओ दीपोर कहाँ

0: सबो सब पनि अब
1: अब नहीं नहीं मुझे सार सांबुक सांबुक
0: सेमिया हंके
1: हंके
0: हंके भागे के नहीं नहीं सबोर सब तमो अब रोबन साई में या हंके
1: हंके
0: भाद्र मास नि बैशाख आम बैशाख पूजानि
1: भाद्र मास नि
0: हि
1: और सियार होय
0: हि
1: पान थदुर पाव क्लायो हिमानि
0: अ अंकले
1: गोय गोयनि बुमुखे इमाउनि खुमफौ
0: ए इमाउनि खुमसे
1: हि
0: इमाउनि खुम ना
1: सार
0: अ सामने के सबो
1: अ सामनेले साइमारिया मुंगे
0: आबो सेमेने हे
1: सार
0: साइमिया आहा के न आबो शमालिया इमांगनि खुमनि सिमिं साका के नुनु आं ओ इमांगनि खुम हुमानि अरनि न समुं खनार गरसिवन दो
1: दा
0: सार इमांगनि खुम माने अरनि सामुं खनार गरसिवन तामने के नंगो काम के सासुई मालिया बा
1: आ ओ सानैनि मु मालिया तां
0: हे दा कक्रि
1: आंजां दलाइनि दलाइ लंगत्राय बेलिनि से
0: आव आव आव आव आव दलाइ लंगत्राय बेलि तंग तिनें करंग हरो ना
1: दा साल तिला गानानि
0: दा दा खना दिया को हाके इमांगनि खुमनि नो सामुं तांसा आंनि मागै थाबो खनारै तंगो दो
1: दिफर काम
0: दो बेलाय दिफर काम

0: खाखलायो भाद्रमासनि रसामं खाना दिहनि आनु जे कय हरमनि लंत्राय बेलेनि बिनि नायमानि खाना दगजागमनि आ रसामुनो ताम जाखना हनायनाय आव ताय ब खाबो खाना दगजाखना तंथक जाखना आव रसामनायंखा बिपि मलसय आव हके हजरो ककदुगो साबतंफि नायना हेलो करंगै मानलिया हाके खाबोनि मारेगिसिं आव नरक खानाय तंगो नरकनि हामजाकमा चिनि खातुंमा पान्दा ताय नरक नरकनि खानातक जाकमानि रसामुं रक खानानि बागै नरक रसामुंनि ककथाय ताय रसाबनाय साबो आबरक नरक आनो सानानि तापकदि हाके आं दाक्ति दाक्ति नरकनो खानारोइ मानो नरक स्राय स्रायखे सायांके आं नायतुंनान किसे लेरि थांगुता दो हाके नायनो ककदुगो साबो तंफि हेलो हेलो
1: हेलो सार
0: आओ दिपर कहाम
1: दिपर कहाम हाय करन जाखा सचिंद्र देवरमा बायला बांगने
0: ओ सचिंद्र सि ना न सागर सागर द
1: कल दय हार कल दय हार मले सार
0: हायनो
1: आं किनि गान क तांस खनाव सार क डांस डांस
0: डांस नि
1: dance dance
0: ए साबोर साब
1: आलसा सिनाय नै से माने
0: अ आलसा सिनाय
1: नै से माने मेरी दिल आईगा लेख दिल की जुबी जुबी जुबी
0: समान
1: होता बा गा अब मैं खा तार गा अब मैं खा तार जाने दे
0: जुबी जुबी तुम ले
1: हां
0: नंगजे सामने आबो नों जे सामान आर सामुं दङ आलिसा सिनय बाय एरसाबजाक आलिसा सिनय बापिलाहारि जुबि जुबि इ दङ दङ
1: जुबि
0: जुबि मोनाव
1: गां गिसा देबे खायन सार
0: द खायदि
1: ग सिनि पारानि सिनपारा सिनि आलेबांनि देबरमा गा यां गंगासरनि बिस्राय देबरमा कुमो इंग मासा कुमो सन्तोष देवरमा के नाम के नंग मासा थंगो सार
0: द आको बेलाय हामबाय आनुबो खप मानि बागै
1: बेलाय हामबाय
0: बेलाय हामबाय खनाय नालायगार ना हेके आलिसा सिनोनि खरांगो बा द आको

आओ खपने मारकी सिंह सनम तेरी कसम आओ म्यूजिक कंपोजर टा डायरेक्टर हंगांके आ क्या भैया सिनी राहुल डबर मन्नो खपंग मारकी सिंह नहेडी और समुग्र बुसक से खना तो किशोर कुमार तय आशा बुसले नहीं खुआरंगो बेलाई खना तो खनाई नाले गरना है के।

आव बसक से खाना तो तोक हमसे कतलनी बासेनी हानोक सॉन्ग रॉक हनी नहीं है दी बना आव कहले पानंग खांग के बसक से तोंग तो तोक हमसे कतलनी सामरिक कतलनी बखानी बर रॉक यंग सामाई सामाई जे बुप्रांग बुप्रांग जे सॉन्ग रॉक माले लगे खांग के कान मुंग सुंग मुंग कतल कान लाई सुम लाई बसक से तोंग तो तोक है दी बना यंग मुहानवे माई साला ये आव अमोहाइनो नहीं फिर नहीं क्यों जरो सें ताई तंगसा कर समुंग खनाई ना लाई करना कपने मारे किसीं नरुन बागे ताई तंगसा आ पार्मिता ताई विक्रम भाई सब्जा कर समुंग नरुन बागे इंग्रजी तंग

आओ खबने मारे किसिंग संग साधना रियंगनी खोरंगोर समुंग खनालाय का ओजरो हाइन हाइ संग समुंग ताईतंगसा खनालाय वाने आओ नंगना तंके और समुंग नर्नी बागई इंग्रजी तंग हाके ओजरो समुंग तंगसा खनाई नालाय करना मानिक ताई विपासने रियंगनी खोरंगो

0: है, दाल में कुछ काला है।
1: काला?
2: तुम्हारे ख्याल में ये कौन गा रहा है?
0: अरे ये तो मेरा भोला है, वो देख सामने खड़ा।
2: नहीं नहीं, ये तो विद्यापति है।
0: विद्यापति? कौन विद्यापति?
2: मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ा कवैया है।
0: I don't believe it, it's impossible. You have to believe it. चलो मेरे साथ।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाल
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम

झूला चंदन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।

0: अरे बाबा तुम भी तो कुछ बोलो ना।
1: ये बात है तो सुनो।
2: छोड़ो जान जा तुम भी हो कहां, घबराते नहीं हम जमाने से।
3: हैं क्या आछेन बंधु?
4: হ্যাঁ নমস্কার, আমি শঙ্কর চৌধুরী।
3: হ্যাঁ শঙ্কর বল।
4: এটা নেল্লুর, অন্ধ্রপ্রদেশে নেল্লুর।
3: একদম সঠিক উত্তর, ধন্যবাদ।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

0: बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने

0: भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों

0: के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृह मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय

राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, যে বিষয় নিয়ে আমরা আজ কথা বলবো সে বিষয়টি আবারও আপনাদেরকে জানিয়ে দিই। আজকের আজ রাতে পর্বের বিষয় বর্ষার ব্যাকরণ। আর বর্ষার ব্যাকরণ নিয়ে আপনাদের মতামত আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে ডায়াল করবেন 03812326253 এই নম্বরটি, অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন 9402169965 এই নম্বরটিতে। আমি রয়েছি আপনাদের বন্ধু আর যে শর্মিষ্ঠা আপনাদের সঙ্গে আজ রাতে পর্বে।
1: बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।